सिरक सबर की लड़ाई। जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नूं वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लिया।

कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़िया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर, बाणी विच महाराज कहते हैं कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ए, बड़ी कोशिश की इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान

कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया, हमेशा मखमल दे गद्यां विच सौण वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए, उम्रां भी बड़ियां छोटियां छोटियां, पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, डराबे दिते, एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या, ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साड़ी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तो तुसी की करोगे। आ वेखो जरा अमृत की शक्ति, उम्र का तकाजा नहीं, अमृत की शक्ति गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा। सूबे नू क्या, पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे, होर सिंघां नू तैयार करांगे अमृत छका करके, फौज तैयार करांगे, ते ओ फौज जदों त्यार बर त्यार होवेगी फिर जुलम दे टाकरे ते आके मैदाने जंग विच डटांगे, भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनियां पैण, अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे। इत्थे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि यह गल सुनी तां मलेरकोटले दा नवाब अश अश कर उठिया, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह। लेकिन कोल ही खड़िया सी सुचानंद दीवान, कहन लगा, ए नवाब साहब, सब दे बच्चे हमेशा सब ही हुंदे हैं, इन्हां दा मूंह बाहर कढ़न तो पहला पहला ही सिर फेर दिता जाना चाहिदा है, इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा है। ते फतवा भी की लाया, नीहां दे विच चिण दिओ, जिंदा ही नीहां दे विच चिणवा दिता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, तन उन्हां दी सिखी, तन बख्शिश अमृत दी दात, छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने जिंदा ही नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया, पर सिदक निहारिया, सिदक तो नहीं डोले,

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
4: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
7: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
6: We're not having that, are we?
7: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सूफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01।

0: 72 3030.
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, you that? Is water and cans?
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together,
7: it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3

0: It's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
1: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
2: We're not having that, are we?
1: No. Oi, hear that? It's water and cans.
3: And fix those drips and drops.
4: And take shorter showers, yeah?
5: Because when we work together, it all adds up.
6: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
7: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
8: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
7: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
8: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking for a quality home to rent?
10: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
9: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
7: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
8: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
7: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
8: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
11: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, that's
4: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
5: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: For your family treat this summer,
2: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
1: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
2: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
1: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
2: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this? Riddhi.

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दस ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM स्टूडियो पर और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डेप पे सुनना चाहें तो आप हमें ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकलिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में सुन सकते हैं। और अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ जो बहुत सारे ढेर सारे दोस्तों का फेवरेट गीत है। तो चलते हैं सुनते हैं प्रोग्राम का पहला गीत हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। सोफी ज्वेलर्स 119-21-21 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9। कॉल 01274 056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त जनाब टाइम हुआ है 11:16, यानी कि 11:16। तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम।

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: For your family treat this summer.
3: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना कमाल सानू और अलका यग्निक की आवाजों में। आज ब्रेडफोर्ड में बरसात हो रही है तो गाना भी बरसात का लगा दिया। अब जनाब चलेंगे अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है उदय नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। और हीरा खान साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अच्छा लगा आपने फ़ोन किया। और अभी मिस कॉल दी शाहिद भाई जेलों वाले, आपने भी, आपके नाम भी ये गीत करेंगे। प्यारी सी शायरी है, यकीनन आप सभी दोस्त पसंद करेंगे। हाजरा जी आपके नाम करेंगे और साइमा जी आपके नाम करेंगे और इसके साथ साथ गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे, नवीद भाई आपके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए।

0: जी दोस्तों, अभी आपने श्रिया घोषाल और रुद्र नारायण की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के साथ ही वक्त हो चुका है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक और प्यारा सा गीत होगा, वो भी श्रिया घोषाल और रुद्र नारायण की आवाजों में होगा। वाजिद भाई एड्रेसवीट से फ़ोन करने का शुक्रिया, आपके नाम करेंगे। उसके बाद मैनचेस्टर से भाई रुखसार अहमद साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, आपके नाम ये गीत करेंगे। और उसके बाद सोनिया बहन बर्मिंघम से, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, और आपके नाम भी गीत करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं और इसी गीत को कमल सभा आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा।
1: सनराइज रेडियो, सनराइज।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord You can trust.
4: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3503

जी दोस्तों, अभी आपने श्रिया घोषाल और उदर नारायण की आवाज़ों में प्यारा सा गीत सुना, और आप चलते हैं अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है आप सभी दोस्तों के लिए। अब्दुल कय्यूम साहब राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, और आपने तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज़ किया और सभी दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहा, तो आपके नाम और इसी गीत को तमाम सुनने वालों के नाम करूँगा।

जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना राहत फतेह अली खान की प्यारी सी आवाज़ में, और इसके साथ ही जनाब हमें आज़म भाई आपने फ़ोन किया और कहा कि यार एक प्यारा सा गीत कोई और राहत फतेह अली खान की आवाज़ में प्ले कर देना। तो जनाब प्ले करते हैं ये आप दोस्तों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए। और नसरीन साहबा आप सुनना चाहती हैं अपनी बिटिया आसमा के लिए, उनके नाम भी करते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने जनाब राहत फतेह अली खां की आवाज़ में प्यारा सा गीत सुना, और आज़म भाई आपने कहा था, क्योंकि मैंने राहत फतेह अली खां का गाना लगाया तो आपने कहा एक और सुनाइएगा, क्योंकि वो गाना राहत फतेह अली खां का आपने एंड पे सुना और आपने कहा कि आपके फेवरेट हैं और आप जनाब वो उनका कोई और गीत सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए पेश किया था। उम्मीद रखता हूँ आपको ये गाना पसंद आया होगा। और दोस्तों, अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:46, यानी कि 11:46। तो जनाब, कोई मस्ती भरा गीत हो जाए कमर्शियल के बाद, एक सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है। और फरजाना साहबा, आपने फ़ोन किया, मैं जो गाना प्ले करने जा रहा हूँ थोड़ा मस्ती भरा है, कोई और तरह नहीं है, लेकिन चलिए आप इस गीत को एंजॉय कीजिएगा। आपके साथ आपकी फ्रेंड है स्कीना साहिबा, उम्मीद रखता हूँ उन्हें भी ये गाना पसंद आएगा। तो आप दोनों के नाम, और उसके बाद तारिक जुल्फी साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और आपने कहा कि आप जनाब सुनना चाहते हैं अपने स्पेशल प्यारे दोस्त ईरा खान साहब के लिए और मलक इसहाक साहब के लिए और दीगर तमाम दोस्तों के लिए। तो जनाब, कमर्शियल के बाद जो गीत होगा वो आपकी जानिब से जनाब आपके दोस्तों के नाम होगा, शुक्रिया फ़ोन करने का। उसके बाद खान भाई, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, और आपके नाम भी ये गीत करते हैं, थोड़ा मस्ती भरा गीत है, लता जी और एस पी सुब्रमण्यम की आवाज़ों में है। और उसके बाद जनाब, इसी गीत को अब्दुल क्यूम साफ राइजिंग हॉल से आपके नाम भी करेंगे, वाजिद भाई एडर्सफील्ड से आपके नाम भी करेंगे, और उसके बाद गुलाम भाई और सफ़ीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। चौधरी मनीष साहब चक्की वाले हैं और चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, उनके नाम भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये मस्ती भरा गीत कमर्शियल के बाद, इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बड़ा इंजॉयबल गीत है, मस्ती भरा गीत है लेकिन बड़ा इंजॉयबल है। तो आप सभी सुनने वालों के नाम करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। 3 घंटों का सफ़र है, 1 घंटा तो नियरली ख़त्म होने वाला है, पीछे 2 घंटे मज़ीद रहते हैं दोस्तों मेरा और आपका साथ, तो ज़रूर निभाइएगा। अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। अगर आप फरमाइश करना चाहें तो भी, अगर हमारे सिस्टम में वो गीत हुआ तो ज़रूर प्ले कर देंगे, वरना अपनी तरफ से कोई अच्छा सा आप दोस्तों के लिए गीत प्ले कर देंगे। तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, प्रोग्राम में शमूलियत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं अब कमर्शियल, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे है। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। कोशिश होगी ये प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है इससे भी अच्छे और प्यारे गीतों से सजाया जाए। तो अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं रीटा वदावर के साथ और रीटा वदावर का गीत जो है चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करेंगे, शुक्रिया फ़ोन करने का। उसके बाद नसरीन साहब आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका। और आप अपनी बिटिया आसमा के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो आपके नाम भी करेंगे। और ग़ुलाम भाई शुक्रिया आपका भी, बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके हमेशा की तरह। और जनाब आप के नाम करेंगे, नवीद भाई के नाम करेंगे और आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे। और उसके बाद खान भाई आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। स्पेशली जनाब इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं, इकरा हैं जो सुनना चाहती हैं नजमा के लिए, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए, उनके नाम भी करेंगे। मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं, सुनते रहिएगा।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना। और अब जनाब वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक मस्ती भरा गीत होगा, लेकिन पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:13, यानी कि 12:13, और लियाकत भाई फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक मस्ती भरा गीत है अलका याग्निक की आवाज़ में, कमर्शियल के बाद आपके नाम करेंगे। और फिर आपने मिस कॉल दी जनाब, आखिरी डिजिट हैं 4 डिजिट हैं 8844 आपके, आपका नाम रजिस्टर नहीं है, तो आप मिस कॉल ना दें क्योंकि आपका नाम हमें नहीं पता। आप बात करें, हम आपका नाम रजिस्टर करेंगे, फिर आप मिस कॉल देंगे तो आपके लिए गीत लगा दिया करेंगे। तो उसके बाद इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा जनाब मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दत्ता, मेहर, बाबर, इफराज और गुलाम भाई आप के नाम, आपके स्टाफ के नाम। मस्ती भरा गीत है अलका याग्निक की आवाज में। तो चलते हैं, सुनते हैं पहले कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 07834177866, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

अलका याग्निक की सुरीली आवाज में सुरीला सा गीत आप दोस्तों ने सुना। तो चलते हैं दोस्तों, अब एक और मस्ती भरा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं। जहां कहीं भी है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं, तो आपके नाम किया ये गीत एंजॉय कीजिएगा। दिनेश भाई आपके लिए मैं जरूर गीत लगाऊंगा, थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा।

0: दिल टोटे टोटे हो गया, हमारा भी दिल टोटे टोटे हो गया जब सुना आरिफ अली से कि वो तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट जा रहे हैं और बशारत अली भी एयरपोर्ट पे निकल गए हैं और सिकंदर अली आपको अकेले छोड़ गए। यार ये क्या हुआ, आप भी चले जाते, ये क्या हुआ आपको अकेले छोड़ गए दुकान पे। और ये दोनों भाई बशारत अली की तो अंडरस्टैंड करता हूँ मैं, वो तो एयरपोर्ट पे उसको तो जाना ही चाहिए था, ये आरिफ अली आपको छोड़ के क्यों चला गया। खाए कोई बात नहीं, उस वक्त आरिफ अली आपने मुझे फ़ोन किया, गप नहीं लगा सका क्योंकि उस वक्त स्टूडियो में कुछ मेहमान थे जिसकी वजह से आपसे मैं बात नहीं कर पाया, सिर्फ कॉल आपकी ली। तो एनीवे ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप लोग सिकंदर अली के साथ। कोई बात नहीं, शाम को आपसे मिलता हूँ मैं, क्योंकि ये बेइंसाफी है, बेइंसाफी है। दिल टूटे टूटे हो गया जनाब हमारा कि मेरे इस छोटे शहजादे को अकेले छोड़ गए हो आप। तो यार ये तो अच्छी बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कमर्शियल के बाद गाना फिर भी लगा दूंगा बशारत अली सिकंदर अली आरिफ अली आपके लिए, तो इन्जॉय कीजिएगा। और अब जनाब दिनेश भाई आपके नाम भी करेंगे, आप पुराने गीत पसंद करते हैं लेकिन अभी पुराने गीत की बारी नहीं है, जब पुराने गीत की बारी आएगी तो ज़रूर आपके लिए पुराना गीत होगा। फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा, थोड़े लाइवली गीत प्ले कर रहा हूँ क्योंकि एक तो बारिश हो रही है जनाब ब्रेडफोर्ड में और ऊपर से बंदूक कई बंदे जो हैं वो मूड ख़राब हो जाते हैं उनके जब बारिश होती है। हमें तो अच्छा लगता है लेकिन इरा खान साहब ने कहा नहीं यार बारिश नहीं होनी चाहिए थी, तो चलिए इसलिए फिर मैं उनके मूड के लिए अच्छा रहे और जो दोस्त काम कर रहे हैं उनका भी अच्छा काम दिल लगा रहे तो इसलिए मस्ती भरे थोड़े फास्ट गीत लगा रहा हूं। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744-62 or 077 900 3538. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और काफ़ी दोस्त जो हैं वो फ़ोन कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। उम्मीद रखते हैं कि जहां कहीं भी आप सुन रहे हैं आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, अब क्योंकि कमर्शियल का टाइम भी आने वाला है और जो है वो प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाते हुए कमर्शियल से जाने से पहले एक और कोई मस्ती भरा तेज सा गीत सुनते हैं, ताकि ये गीतों का सिलसिला जो है ना ये चलता रहे। तो अब क्या करें, कौन सा गीत लगाएं, ये समझ नहीं आ रही हमें। तो अब गीत तो लगाएंगे ही, लेकिन समझ नहीं आ रही कौन सा लगाएं।

0: क्योंकि कोई छोटा सा गीत चाहिए जो हमें कमर्शियल पे टेंशन ना दे, तो इस वजह से बातों बातों पहले मैं सोच रहा था, गौर नहीं की, फोनों पे लगा रहा और सोचा कि ये गीत हमें कमर्शियल तक ले जाएगा, तो कमर्शियल से पहले ये गीत ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है कि अब मैं सोच रहा हूँ कोई गीत हो ही नहीं, क्योंकि कमर्शियल का टाइम जो है वो अब बातों में ही निकल गया है, आगे गीत सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैंने गीत क्यों नहीं किया हुआ था कोई, सोच रहा था कि कोई पुराने गीत की बारी आएगी वो लगाऊँगा, तो देखता हूँ कौन सा लगाऊँगा, तो इतने में ये जो है गीत ख़त्म हो गया। और तो हम चलेंगे अब कमर्शियल की जानिब, कमर्शियल के बाद हम एक प्यारा सा गीत सुनेंगे रफ़ी साहब की आवाज़ में, मस्ती भरा नहीं होगा, ये थोड़ा स्लो गीत होगा, मौसम के लिहाज से गीत बहुत अच्छा है, दिल कर रहा है ये गाना सुनने को। तो जनाब दिनेश भाई आपके नाम करेंगे, हीरा खान साहब आपके नाम करेंगे, लियाकत भाई आपके नाम करेंगे, और चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम करेंगे, ग़ुलाम भाई आपके नाम करेंगे, नवीद भाई आपके नाम करेंगे, ख़ान साहब आपके नाम करेंगे, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब आपके नाम करेंगे, अब्दुल क़य्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले आपके नाम करेंगे, चौधरी रुखसार अहमद साहब आपके नाम करेंगे, शाहिद भाई झेलों वाले आपके नाम करेंगे, और सफ़ीउल्लाह भाई के नाम करेंगे, और दीगर दोस्त हैं उनके नाम करेंगे। टाइम चेक कर लेते हैं,
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:42 यानी कि 42 minutes past 12। तो चलेंगे जैसे कि मैंने कहा कि गीत सुनेंगे रफ़ी साहब का, और ये मस्ती भरा नहीं है, बाद में मस्ती भरे गीत ही प्ले करूंगा आज मौसम के लिहाज से, लेकिन ये गाना मन कर रहा था सुनने को, बड़ा प्यारा गीत है, तो आप दोस्तों के नाम करूंगा, तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। Sunrise Radio.
2: Sunrise Radio. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

हर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहुत ही प्यारा गीत था आप प्यारे दोस्तों के लिए। और दोस्तों अब चलेंगे अगले गीत की जानिब। प्यारा सा गीत है आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ, क्यों मुझे लंबा सा गीत चाहिए था, क्योंकि 5-6 मिनट का गीत आता तो फिर क्या होता कि आखिर पे जो गीत में प्ले करता वो आधा गीत आप सुनते, या फिर तो 3 मिनट का कोई गीत मुझे ढूंढना पड़ता। तो मैं भी लेजी होके बैठा हूँ, तो सोचा चलिए कोई लंबा सा गीत ही लगा देता हूँ ताकि आराम से सुकून से ये इस आवर का आखिरी गीत हो जाए, हमें टेंशन ना लेनी पड़े। तो चलते हैं जनाब, ये गीत मेरी जानिब से तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और इंजॉय करते हैं।

0: तो साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी दोस्तों ने प्रोग्राम के दो हिस्से पसंद किए होंगे। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे और म्यारी गीत पेश करें। तो खबरों से पहले जीत कौर भैना आपने फोन किया था, शुक्रिया फोन करने का। और अब गुरदास मान की आवाज में हम हिट ऑफ द आवर की शक्ल में धमाल जो है वो आपके लिए पेश करेंगे। और जीत कौर भैना आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम होगी, स्पेशली मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम जिनमें है इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दित्ता, हुमैर, बाबर और इफराज। और इस वक्त जो हैं वो तीन शहजादे बाबर शाह पे होते हैं, लेकिन आज क्योंकि आरिफ अली ने बताया कि वो और बशारत अली तो एयरपोर्ट पे हैं मैनचेस्टर में, और जनाब खाली सिकंदर अली दुकान पे हैं, तो उनके नाम करेंगे ये धमाल। और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और शाहिद भाई जेलम वाले, आपने भी मिस कॉल दी, आप भी सुन रहे हैं तो आपके नाम भी करते हैं जनाब। और चौधरी मुजफ्फर साहब, चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, उनके नाम भी। चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं गुरदास समान की प्यारी सुरीली आवाज में ये प्यारी सी धमाल आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: Hour brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: अभी आपने धमाल सुनी गुरदास मान की प्यारी सुरीली आवाज में. इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों, टाइम चेक कर लेते हैं.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:15, यानी कि 1:15. तो चलेंगे कमर्शियल की जानिब. कमर्शियल के बाद प्यारी बहना गजाला जबीन साहबा, आप भी रोचनेल में सुन रही हैं. शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का. और आपके नाम अब थोड़े पुराने गीत एक दो प्ले करूंगा, तो आपके नाम करूंगा और जीत कौर बहना आपके नाम करूंगा. गुलाम भाई आपकी जानिब से, आपके स्टाफ के नाम, दिनेश भाई आपके नाम भी, और हीरा खान साहब आपके नाम, और तारिक जुल्फी साहब. तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल. कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है.
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत.
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक. गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं. टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें. मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1. टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303.
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.

हम प्रेमी प्रेम करना जाने लता जी, किशोर कुमार, रफी साहब और शिरेंद्र सिंह की आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना। आप थोड़े से पुराने गीत लगाएंगे जनाब, आप दोस्तों के लिए जो गिले करते रहते हैं पुराने गीत नहीं सुनते, सुनाते नहीं है, सिर्फ एक घंटे में लगाते हैं, तो एंजॉय कीजिएगा इन गीतों को।

0: हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। जनाब रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता जी और मुकेश की आवाज़ों में आपने ये प्यारा सा गीत सुना। और अब इसके साथ ही कमर्शियल का टाइम हो गया है। जरीना साहबा, फ़ोन करने का शुक्रिया। कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपके नाम होगा और मुना जी आपके नाम होगा, और आपके साथ साथ इसी गीत को गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे और नवीद भाई आपके नाम भी करेंगे। मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर, इफराज आपके नाम भी करेंगे। पुराने गीत इस वक्त लगे हुए हैं जनाब, और बड़ा मज़े का गीत आ रहा है जनाब लता जी और मुकेश की आवाज़ में। और इकरा जी, आप नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए सुनना चाहती हैं, और आजरा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। और महमूद भाई, आप भी फ़ोन कर रहे हैं, मिस कॉल दे रहे हैं, आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: 24 hours a day.
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

जी दोस्तों, अभी आपने कंचन और मुकेश की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसके साथ ही दोस्तों, वक्त हमें बता रहा है कि कोई गीत नहीं होगा अब, क्योंकि वक्त हो चुका है जोहर की अजान का। तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आप जोहर की अजान सुन रहे थे और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम भी हो चुका है, तो हम चाहेंगे पहले जनाब जो टाइम है वो चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:45, यानी कि 1:45। तो चलेंगे जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक मस्ती भरा गीत, सदाबहार पुराना गीत। अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग ऑल से शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम वाजिद भाई रसफीर से, आपके नाम महमूद भाई और जनाब गुलाम भाई और सफीउल्ला भाई। गुलाम भाई का फेवरेट गीत है ये जनाब, उनके नाम भी और हीरास खान साहब, लियाकत भाई, चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब तारिक जुल्फी साहब और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, महबूब इलाही साहब और दीगर जनाब दोस्त जो इस वक्त संडा रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, उन सब के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गुलाम भाई का फेवरेट गीत और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
3: 24 hours a day, 103.2, this is Sunrise Radio.
4: Station, radio station in the world. Sunrise Radio.
5: आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों साथियों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब दोस्तों मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। उम्मीद रखते हैं आज का प्रोग्राम आप साथियों ने पसंद किया होगा और साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अमर शहजाद को इजाजत दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात संडे सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735, 043.

ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई। ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गईयां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है? कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो

0: चिड़िया कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735. 043

0: हमें तो पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था।
1: मुझे भी तो तुम दोनों से पहली नजर में प्यार हो गया था। I said, what gorgeous sexy men. साथ में गुंडे मगर ख्वाब बड़े बड़े।
2: कयामत कयामत कयामत।

जमा खोगे मोरे उसुख के पाके का अवे जमा खोरे तुब पदक का स्वाद के पदक पटू के हम फल कोर के तक कसी बली भी के संगचरी कवली।